0: Assalamu alaikum. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by the world famous Qari Mishari Rashid Ali Fasi from Kuwait. Stay tuned to Inspire FM.
1: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
2: Inspire FM. A radio station for the community, by the community. Inspire FM.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
6: My name is James from Chicago.
7: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
8: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hale.
9: My name is Mohammed Osman. I'm a local scout leader.
10: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
11: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
12: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
13: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
14: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
15: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
16: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:00.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

0: firms known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury, and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
3: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
4: Oh, Hillary.
5: I was going to use newspaper display advertising.
6: But
5: it costs £10 per inch.
6: And that's too expensive?
5: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
6: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
7: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
9: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
11: Ji.
12: Koi question aapke dil aur dimag mein abhi aaya ho?
11: Sir, main abhi jaise aap explain kar rahe the. तो उसमें आपको लगता है से डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल कि वो इन सब चीजों में से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करता है और उसको कैसे समझता है।
12: जी बिल्कुल, इंसान का जो मटेरियल होता है, इंसान जिस मट्टी से बना है उससे असर पड़ता है, आपके जो जेनेटिक्स होते हैं उससे असर पड़ता है, आप कितना सोच और समझ रखने वाले हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक ही समझता है। कई लोगों के लिए आप दुनिया, ज़मीन, आसमान भी एक कर दें, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उनको अगर आप $100 दें रोज़ के और उसके बाद आप दो भी कर दें तो उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन तमाम चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इससे ये होता है कि आपकी मट्टी के लोग आपके साथ हो जाते हैं और जो आपके लिए नहीं होते वो अलहदा हो जाते हैं। इसी को फिलासफ़ी की ज़बान में मैं सिंपल करने के लिए, ताकि लोगों को याद रहे, उसे कहता हूँ, आप एक्सपीरियंस देंगे और उस एक्सपीरियंस के बाद घोड़े और गधे अलहदा हो जाएंगे। तो इस तरह हर बंदा डिफरेंट है। फिर आपने ये देखना है कि ये आपके लिए है या नहीं। वो आपके लिए नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, बस वो आपके लिए नहीं अच्छा, ठीक है। क्योंकि लोग ये हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, लोग जनरली हमेशा गुमान को अच्छा करें। गुमान अच्छा क्या कहता है कि लोग हमेशा अच्छे होते, बस कभी कभी आपके लिए अच्छे नहीं होते। तो उनको जब आप उनसे अलहदा होते हैं तो उनको उन जैसे मिल जाते हैं, आपको आप जैसे मिल जाते हैं, टाइम, एनर्जी, इमोशन, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और आप उसमें बेहतर अब काम कर सकते हैं, कोई या बेहतर चीज़ ढूंढ सकते हैं अपने लिए। आपका वक्त ज़ाया नहीं होता और दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका वक्त और आपकी एनर्जी है, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, होल्ड रखिएगा मेरे साथ, ठीक है। और मेहरबान जी हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी बड़े सयाने, उन्होंने सही जगह पे कॉल कर लिया और आज वो गौर से सुन रहे थे। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसा मैंने कहा दोबारा नहीं एक्सप्लेन करना पड़ा। जी
13: अस्सलाम
12: अस्सलाम वालेकुम,
13: बारिश फरमाया।
12: हाँ जी बिल्कुल, आपके बारे
13: शुक्र है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
12: अच्छा मज़े की बात यह है, ये जो मैं क्लिप्स बनाता हूँ और मैं भेज देता हूँ, मैंने तो ये क्लिप हो सकता है महीना दो महीने पहले रिकॉर्ड किया हो। हर आदमी जिसके अंदर कोई ना कोई काणापन होता है ना या जिस बंदे को लगता है मुझे कह रहे हैं, वो मुझे मैसेज लिख के भेज देता है कि सर ये आपने मुझे कहा है, भाई ये आपने मुझे कहा है, ये आपने मुझे कहा है। कई लोग जिनके अंदर, तो मैं उन्हें कहता हूँ मैंने तो ऑफकोर्स आपको नहीं कहा, मैंने पता नहीं ये कब कहा था, क्या क्वेश्चन हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, तो ये बात मैंने कही होगी। लेकिन अगर आपको ये लगी है तो इसका मतलब है ये आप हैं। और अगर देखें,
13: मुझे लगती हाँ। नहीं उसे मैं आगे से फॉरवर्ड भी करती हूँ, जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ से आपके लिए और दुआएं आती हैं। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम आपको
12: बदवाएं भी आती होंगी कि भाई ये हर बात जो हमारे अंदर है ये हमें खोल नहीं, के नहीं। बता देता है सामने, क्या फायदा। जी
13: नहीं, वो दुआएं आती हैं, मैं आपको ज्यादा होल्ड नहीं करवाऊंगी, मैं दोबारा कॉल कर लूंगी क्योंकि मुझे वो दूसरी बातें भी सुननी है। आपको मुबारकबाद देनी थी क्योंकि आपकी जो आई थिंक इस वक्त होल्ड पे हैं साथ में, हमें आपकी और उनकी कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है।
12: अच्छा, इसका मतलब है आपने अच्छा उनको बता दिया, वरना हर बंदा कुछ नहीं है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो इतना अच्छा नहीं होता। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपके कंग्रेचुलेशन पहुँच गई और उन तक भी आवाज पहुँच गई। जी सजीरा जी
14: अस्सलाम
12: वालेकुम। आज तो आपने हैंड्स ऑन सुन लिया, लोग आपकी और हमारी कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं एज अ को होस्ट।
14: वही जार कुर्बान शमजादला, इतने प्यारे प्यारे आपके आपकी ऑडियंस इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह इनको इनकी जिंदगियों को अल्लाह पाक नूर से भरते।
12: बिल्कुल जरूर। और देखें जहरा जी, पहले ममता जी होती थी, फिर जहरा, वो लंबे अरसे तक ड्यूटी करती रहीं फर्स्ट कॉलर की, फिर जहरा जी अवेलेबल थी वो करती रहीं, फिर वो मसरूफ़ हो गई, ममता जी आई वो अवेलेबल थी मसरूफ़ हो गई, फिर उसके बाद आजकल अफशान जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है को होस्टिंग की, शुरू में शो को शुरू करने की। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं आपको कैसे पता होता है लोग आएंगे, अगर किसी दिन लोग ना आए तो मैंने एक बात ये कि मैं कैसे मान जाऊँ कि कोई नहीं आएगा। एक बात, जब हमेशा आते हैं रब की मेहरबानी होती है, जिस दिन कोई नहीं आएगा उस दिन कोई मकसद मसलियत होगी और उस दिन हम अपनी बात कर लेंगे और घंटों कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो लोग आएंगे, उनके दिल में जैसे जैसे जिसका जो जब दिल चाहेगा वो जब आएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है ये, ज़ोर ज़बरदस्ती तो हम टीम वालों के साथ कर रहे हैं तो वो नहीं पूरे करते। अभी तक हम उस जगह पर ही नहीं पहुँचे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील करके खुद चीज़ें कर सकें, और कमिटमेंट्स और चीज़ें भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हुक्म
14: बस अजाज़ल्ला, आपको रेडियो आज़ाद की सालगिरह बहुत बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी ये पांचवा साल है, मैं तो इतनी अभी ज्वाइन की है, लेकिन इन पांच सालों में तकरीबन बहुत ज़्यादा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस।
12: कोशिश, मेरा काम है कोशिश करना, आयशा जी का काम है इस प्लेटफॉर्म को चलाते रहना, हमारी टीम का काम है उसको सपोर्ट करते रहना, लिसनर्स का काम है अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहना और गाहे गाहे एक्नॉलेजमेंट करते रहना, स्पॉन्सर्स का, प्रोड्यूसर्स का और एडवर्टाइजर्स का काम है अपना अपना हिस्सा डालते रहना। हम सब ने जो जो डाला है उसकी वजह से रेडियो आज़ाद यहाँ पहुँचा, हम में से बहुत सारे लोगों ने और डालने की कैपेसिटी है हम सब में, मुझ में, बाकी लोगों में, वो और डालेंगे और बाकी लोग उसका और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर साल कम अज़ कम कोई भी चीज़ 10-15% हर साल उसके अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे आपने उसमें देखा ये जो फंड रेजर हम करते हैं, تین سال پہلے $1,02,000 تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال ہم نے $1,25,000 ریز کیے، اس سال $1,50,000 آپ کو بتائے لیکن بیہائنڈ دا سین اس سے بھی زیادہ ہوئے. تو اس طرح جیسے پروگرس ہوتی رہے گی، نتھنگ موٹیویٹس یو مور دین ریزلٹس. تو ریزلٹس جب آتے رہیں گے اور جب ہم اسٹیگنیٹ، دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کیسے چلے گا، ایک ریزلٹس آ رہے ہیں اور دوسرا آپ ایگزاسٹ نہیں ہو رہے، اسٹریس نہیں بڑھ رہا. اگر ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اسٹریس بڑھ رہا ہے اور ریزلٹ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن سسٹم اور ہم اور زیادہ اس کو بہتر کریں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ وداؤٹ اسٹریس یہ سارے سسٹم آئیں. کیونکہ خدا کا قانون، اور یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ رب سے سیکھا. یونیورس ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے چل رہی ہے، اربوں سالوں کی اس کی ایج ہو چکی، آگے بھی اربوں سالوں تک تیار ہے جب تک ہم کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے اور ہم اس کو ختم نہ کر دیں دنیا کو اپنی حرکتوں سے. تب تک جو ہے وہ کام بڑا لمبا ہے اور وہ بغیر تھکے چل رہی ہے. اس آدمی رب سے، میں آپ کو ہر وقت رب کے بارے میں ریفر کرتا رہتا ہوں کیونکہ اور کوئی اینٹیٹی نہیں جو آپ کو اتنا کچھ سکھا سکے. سب جو سکھائیں گے وہ بھی رب سے ہی لے کے سکھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ڈائریکٹ سورس پہ ہاتھ ڈال دیں ہم. تو یونیورس چل رہی ہے، تھک نہیں رہی. جو تھک رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے سسٹم نہیں بن رہا، اس کا مطلب ہے ہم اپنے کام کو سمجھ نہیں پا رہے اور ابھی اس میں امپروومنٹ کی کا روم نہیں، پورا ہال ہے. تو اور میں ہمیشہ چیزوں میں اپنی غلطیاں پہلے نکالتا ہوں، دوسروں کے بعد میں نکالتا ہوں، اور میں جب اپنی ٹھیک کر لیتا ہوں تو پھر میں دوسروں کی طرف آتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی، اب باقیوں کی کیا کیا غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پھر آپ میریکلز دیکھ لیں. ہر چیز کا مجھے لوگ کہتے تھے اور بڑے قریبی لوگ کہتے تھے کہ جی ایف ایم نہیں ہوگا، ایچ ڈی تھری نہیں ہوگا تو ریڈیو نہیں چلے گا. وہ چل رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جی اے ایم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا، وہ بھی بڑا زبردست چل رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں نہیں ہوگا تو بڑا زبردست چل رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ رب جب بیماری دے گا تو ساتھ اس کا علاج بھی دے گا. آپ نے صرف ایمان پکا رکھنا ہے، اپنے کام کو پکا پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے فیتھ کے اوپر آپ نے کام کرتے رہنا ہے. ارد گرد فیتھ اگر کم ہے تو ان میں فیتھ گھسیڑتے رہنا ہے آپ نے، تاکہ ان کا فیتھ بھی اگر کمزور ہے تو وہ نہیں چلے گا کام. کیونکہ اس کے لیے تمام لوگ اپنے اپنے ساتھ ایک ہی، جب تک تمام لوگوں کی سیم برین کی سنکرونائزیشن نہیں ہوگی تب تک ریزلٹس نہیں آ پائیں گے. ہر وہ چیز، میں جس گھر میں ہوں، میں جس رشتے میں ہوں، میں جس فیملیز میں ہوں، میں جن فیملیز میں ہوں، میں جن بزنسز میں ہوں، میں جن آؤٹ فٹس کا ساتھ ہوں، ان میں جو چیز یہ میں کر پا رہا ہوں، جتنا میں رب کا قانون اس میں انکارپوریٹ کر پاتا ہوں، اور وہ لوگ ڈھیلا چھوڑتے ہیں خود کو سسٹم کو، کیونکہ سٹیٹس کو کچھ چینج کرنے کے لیے بہت کچھ ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے جیسے وہ لوگ ڈھیلے چھوڑتے جاتے ہیں ان کے ریزلٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں. جس کا فیتھ ویک ہے اس کے فیتھ پہ کام ہوتا رہے گا اور وہ ریزلٹس دیں گے. میں نہیں روز دکھا سکتا، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا. تو اس طرح ساتھ ساتھ میں کام کرتا رہتا ہوں، چیزوں کے ریزلٹ ساتھ ساتھ آتے رہتے. آپ نے ہولڈ کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے. مہربان ہے ہمارے ساتھ. ویڈیوز آج ہی رون دے.
15: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام. مسکراتا ہوا چہرہ، کیسے ہیں آپ؟
15: الحمدللہ. اینڈ آئی ریلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو فار دا ریڈیو آزاد اینیورسری، 14th اینیورسری.
12: نائس آف یو میم، تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے آپ اینیورسری کا انتظار کر رہی تھی کہ اینیورسری پہ کال کریں گی؟
15: نہیں نہیں، میں نے آپ کو ایک بار اور کال کیا تھا.
12: ایک بار آپ کو یاد ہے؟ 14 سال سے ہمارا کام آپ کو یاد نہیں ہے.
15: اینڈ رائٹ ناؤ آلسو آئی ایم ڈرائیونگ ایکچولی.
12: اینڈ یو ور ڈرائیونگ دین آلسو بائی دی وے.
15: I'm sorry?
12: You were driving then also when you called the last time.
15: I stopped driving and then called you.
12: Yes, کیونکہ آپ کہہ رہی تھی نا میں گاڑی میں ہوں. جی جی، یاد ہے ہم کو.
15: So anyway, your program is so amazing and I was listening, you were talking to some of the caller that initially when I started listening to your program, I couldn't believe that it's coming from a person who is from Midwest.
12: ہاں جی، یہ کیوں کیوں لیکن؟
15: I'm sorry?
12: Kyun? Why did you not believe that? And why was it so
15: because
12: so funny?
15: I don't know, you know. I mean, I'm from there too, but I don't know. People are so complicated, mm-hmm. and they make everything so complicated. Mm-hmm. And they don't think straight as you think. And so I couldn't believe it, honestly, that really, he's from there.
12: تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ زیادہ تر تھاٹس جو آپ سیدھا سوچا کرتی تھیں، دوز ور دا رائٹ تھاٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس واز رانگ اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ گیو یو ریزلٹس. ایسا ہی تھا؟
15: یس. اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ از لائک آئی تھاٹ یو ار جسٹ یور ایکسیپشنل ون اینڈ اونلی ون آف ا کائنڈ ان دیٹ کنٹری.
12: नहीं, वन ऑफ अ काइंड मैं एक्चुअली था, बट इसलिए था कि मैं वो एक ही गोली मुझे दे रहे हैं और मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, तो मैं वन ऑफ अ काइंड सिर्फ इस वजह से हुआ कि भाई मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा एंड आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट मेडिसिन एंड वन वर्कड. सो वॉट वो मुझे पता चला दैट आई न्यू अबाउट दिस मेडिसिन ऑल अलॉन्ग एंड दिस मेडिसिन हैज बीन देयर फॉर सेंचुरीज एंड नोबडी वॉज यूजिंग इट एग्जैक्टली विद डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट एक्सक्यूजेज, दे हैव डिफरेंट पीपल टू ब्लेम ऑन और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टू ब्लेम ओवर और ऑन और अपॉन. तो ये इसी वजह से तो वो जब मैंने उसको बिलीव किया, मैं जब खड़ा हुआ, खड़ा होना था सिर्फ. जब तक आप खड़े होकर चलते नहीं हैं, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के साथ रहूँगा. ये हम चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे साथ चल पड़े, जैसे हम चाहते हैं रब हमारे साथ चले. जी नहीं, रब वहीं पे है, वो कांस्टेंट है, एंटिटी है, वो परमानेंट था, है, रहेगी. आपने उसके साथ जाकर अलाइन करना है. ये आपकी विलिंगनेस है और आपके एक्शंस हैं. तो रब तो मेरे साथ था, मैं उसके साथ नहीं था, सिस्टम के साथ. तो बिल्कुल इसी तरह मैं स्ट्रेट था, क्योंकि मेरे अंदर जो डिवाइन स्पार्क है, आपके अंदर भी वही है, वो स्ट्रेट था, उसके अंदर ये सारा कुछ पहले से था. तो मैंने उस पर ईमान ले आया, वो मेरा हिस्सा बन गया. बाकी लोग सारी ज़िंदगी उससे डिनाई करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं, रोते हैं, वीक होते हैं, लेकिन वो वीकनेस किसी और पर डालते हैं. तो मैंने सारी की सारी वीकनेस खुद पर डाली, खास सारी गलतियाँ, सारे नुकसान जो मुझे हुए थे वो मैंने खुद पर डाले. तो सारा कुछ आसान हो गया. उसके बाद कोई गिला करने के लिए या ब्लेम करने के लिए रहा ही नहीं, मैं ही रह गया. तो इट वॉज जस्ट मी. तो जब मैं ही रह गया तो फिर और कोई था नहीं ब्लेम करने के लिए. तो फिर मैंने सोचा चलो उठो फिर काम शुरू करें फरहाद की तरह, ताकि अपनी वो दूध की जो नहर हमने निकालनी है पहाड़ से वो निकाल लें. तो बाद में पता चला कि आप जैसे कितने ही लोग हैं, वो सब अपनी अपनी कुदालें लेके आ गए और फिर बोल के लब आज़ाद हैं, तेरे रेडियो आज़ाद में चेंज हो गया.
15: Yeah, I wish more people listen to your program and, you know, they start listening and applying. Oh my God, there'll be a big change.
12: मुझे मैं आपको मैं एक कमाल बात बताता हूँ. आपने शायद इस तरह नहीं सोचा होगा, बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट. आपके लिए ये सिंपल है, तो आपने फ़ौरन चीज़ को पकड़ा और आपको पता चल गया कि ये बंदा और ये बातें और ये काम सीधे, ठीक है. और सारे रिजल्ट्स जो वो बता रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, बताए चले जा रहे हैं, इसका मतलब है काम ऑथेंटिक है और ये रिजल्ट मैं भी करूँ मुझे आ जाएंगे, ठीक है. आपको पता है सबसे पहला बंदा जो कभी भी मेरे साथ नहीं आएगा और कभी उसको ये मिरेकल्स देखना नसीब नहीं होंगे, वो सबसे पहली थॉट उसके जहन में क्या आती है?
15: What?
12: Oh my God, it is so difficult. And he is so difficult. What is he talking about? It is so difficult. जिस आदमी को आपको ये आपके अंदर से आवाज आई कि ये सीधा है, सिंपल काम है, स्ट्रेट है, और इस जैसे अगर और चीजें हो जाएं या ऐसी बातें और हो जाएं या काम हो जाएं तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसा ही है.
15: Right.
12: वो कहते हैं कि ये जो है कितना मुश्किल है, और ऐसे हो गए तो कितना मुश्किल हो जाएगा. एंड ही इज सो डिफिकल्ट एंड हिज वर्क इज सो डिफिकल्ट एंड हिज पर्सनैलिटी इज सो डिफिकल्ट. तो अब आप सोचें उनके साथ जिंदगी भर आगे क्या होने वाला है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. बिकॉज अगर मैं डिफ़िकल्ट होता तो मुझे मुश्किल ना होती, मेरे साथ काम ना बनते, मेरे रिजल्ट्स ना आते, मेरे रिश्ते मजबूत ना होते, फाइनेंसिस ना अच्छे हो पाते, हेल्थ ना अच्छी हो पाती, जो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड. सो 30 साल तक आई वॉज सफरिंग बिकॉज आई वॉज नॉट विद माई सेल्फ एंड विद द ट्रूथ एंड विद द अंडरस्टैंडिंग एंड विद वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एंड वर्किंग ऑन इट. दूसरी तरफ वो दूसरी टीम है जो कि ये सारी चीज़ें नहीं मानते, और आखिर में जाने से पहले तो यू नो मानना ही पड़ जाता है, मजबूरी है, क्योंकि जब सब दिख जाता है तो वो इतनी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी. एंड कैन यू इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ये सब ज़ाया हो रहा है. व्हाट अ वेस्ट. ये बताइए कब से सुनना शुरू किया?
15: एक्चुअली आई बीन लिसनिंग टू योर प्रोग्राम नॉट कंसिस्टेंटली,
12: ठीक है,
15: यू नो बिकॉज योर रिस्पांसिबिलिटीज एंड
12: ठीक है
15: job of course, but I started in one day December, I remember 2018. Achha. I was driving, I think you used to have your show on AM
12: radio,
15: 11 yeah, yeah. Yep. So I was one day I opened my radio and started listening to your program, and I don't know, I just felt just immediately connected to the program. Mm-hmm. And I was going through a life changing event that time. Mm-hmm. So for some reason, I just kept listening to it because it just gave me more strength to come out of my that situation. Mm-hmm. And I took a break from my job that time, so I kept listening to it just to gain more strength. Mm-hmm. And I kept listening for like a year or so, and then I got busy with my job. And I think it changed. Then you stopped, transmission on AM, and then you switched to FM, I think.
12: Mm-hmm.
15: HD3, and then I did not have that in my car, so I started looking for the car,
12: good,
15: which has that radio actually. But so on and off I was listening. But
12: so
15: now,
12: whatever you have been gathering, or on and off if you are gathering it, जब भी कोई तकलीफ होगी ना, मैं सिर्फ आपको और आपकी रेफरेंस से मैं बहुत सारे और लोगों को बताना चाहूँ, जब भी आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, एनर्जी को जरूरत होगी, स्टार्ट लिसनिंग टू इट एंड टेक मोर टाइम आउट एंड कीप लिसनिंग टू इट, यू विल गेट एनर्जाइज एंड यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा आपको. लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा भी आप सुनती हैं, तो ये बताइए जो जो आपने सीखा उसको कितने परसेंट अप्लाई कर पा रही हैं अभी तक आप?
15: So the last few months I'm listening quite consistently, and it really helps me because there's so many things you tell, like, you know, like simple roti kapda makan, and then exercise and relationships, just simple, you know. So
12: ye bataiye, stress ka level kam hua?
15: I usually I'm a happy person, so okay. I try not to take stress.
12: Theek hai.
15: So I keep myself happy, but yes, okay. If there's something, it really, really helps, you know.
12: Self-acceptance, self-acceptance mein asani hui?
15: Yes, yes, yes, a lot.
12: अपने रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन हो, रब के साथ जो रिलेशनशिप है, क्रिएटर के साथ.
15: Yeah, oh yeah, I have, okay, one, that's something, of course, I've really learned. You relate everything to the Quran, you know, and we have been reading Quran, and I learned this from your show actually, that this book is not to keep on the shelf and then open in the Ramadan and just put it back. So honestly, I started opening and started reading now, you know, whatever surah you mentioned, like Sumandi, you mentioned Ayat al-Kursi, I went home and literally read the meaning of it.
12: Pata chala usme kya likh keh rahi hain aap khuda se?
15: I'm sorry?
12: Did you understand what you are saying, claiming to God? इन दैट आयत अल कुर्सी जब आप बोल रही होती हैं अरबी में, तो उसका उर्दू का मतलब समझे आपने कि क्या बात कर रही हैं आप?
15: Yeah, I read in English.
12: Okay, how did you feel? Okay, good, perfectly
15: yes.
12: Fine.
15: Yeah, yes, it was so nice to read the meaning, you know.
12: And how did you feel about it? Do you feel more connected? Okay, this is what I am saying. This is what I am uttering. And
15: yes, and actually that's, I learned so many things that if I start talking to you, it will be hours to tell you.
12: चलिए बताइए, रब से relationship बेहतर हुआ?
15: Yes, my namaz has gone better.
12: एक बात ये, I don't try to relate it to Quran, but the thing is, जब आप सब कुछ रब से सीखते हैं, तो it, मैं कहूँ या ना कहूँ, ये सब वहीं चला जाता है, क्योंकि आप इल्म में कभी भी, you cannot get one factor, one element out of knowledge, जो कि creator of knowledge है, तो वो बात उस तक चली जाती है. ये बताइए, लोगों के साथ जो relationship हैं, अब कम लोग अपनी ज़िंदगी में हैं, और कम लोगों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं?
15: Yes, yeah, I mean, I, even otherwise also, I am a person who keep relation with the people who I am comfortable with.
12: जी.
15: If I'm not comfortable, I just stop talking to them, you know.
12: ठीक है.
15: This is like always has been with me. If I'm not comfortable, and if somebody, I know that that person is not right, or that person has like, it's hard to understand other people's intentions, and what they have in their heart, you know, sometimes they are like double faces, they have something in their heart. And
12: overall, are you more skeptical of people? Aap jaldi ghabra jate hain, dar jate hain, ya badi jaldi apne shutter jo hai wo on kar lete hain?
15: Meeting people?
12: Ha, yeah, meeting people, giving them chances, getting more people into your life, the time lete hain na?
15: Yes, yes, I take time, you know. I mean, you come to know when you talk to people that, you know, if you start feeling that if you can be connected to them or not, you know.
12: आप जब शो सुन रही होती हैं, आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी देर के बाद उसका जवाब मिल जाता है साथ ही?
15: Yes, yes, definitely, definitely. Okay. I do get it.
12: ये शो आप ही के लिए आया है, और ये जो ब्रेन वेव आती है, ये आप ही जैसे लोगों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए, इसलिए कभी कभी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जब भी आपको कभी लगे कि कोई थाट है जो बॉदर कर रही है, कोई ऑब्जर्वेशन है जो आप इधर उधर देख रही हैं, कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहती हैं लोगों के साथ, तो वो थॉट लेके आया कीजिए. उस थॉट को हम, एक फूल आप लेके आएंगे, हम पूरा गुलदस्ता बना के आपके और लोगों के हाथ में पकड़ा देंगे. ठीक है?
15: Yeah, actually your program is so, I don't know, it's so amazing that when I am listening to your program, I feel like I'm out of this world.
12: Yeah, वो क्योंकि actual में रब आपको ऐसा ही feel कराना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त परेशानियां, तकलीफें, मसाइल में रहते हैं, वंस यू गेट कनेक्टेड टू द, आपको जब चार्जर में लग गई है ना आप, तो फिर जैसे फोन फील करता है ऐसे आप फील कर रही होती हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन प्योर लग जाए तो जैसे बंदा हाई नहीं हो जाता, तो आप और हम सब लोग हाई हो जाते हैं, इसीलिए तो पता ही नहीं चलता दो घंटे कैसे गुजर जाते हैं। ठीक है,
15: yes, 2 hours, okay, it's 2 hours, you just keep listening to it, and in fact if I'm at home I tell my kids don't disturb me.
12: आपको पता है कितने हस्बैंड्स, कितने मेरे फ्रेंड्स, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि आपने हमारी माओ को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारी बेगमात को एक डिफरेंट इंसान बना दिया और हमारी घरेलू जिंदगी इज मच मच बेटर। चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, इरिटेशन कम हो गई है, पर्सनैलिटी क्लैशेस कम हो गए हैं, रिजिडिटी लोगों में कम होती चली जा रही है। अगर ये सब कुछ आपके घरों में और ज़िंदगी में हो रहा है तो इसका मतलब है यू आर द लिसनर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रेडियो आज़ाद, सही जगह पे आप हैं। अगर इसके अगेंस्ट जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके साथ हो रही हैं तो उसका मतलब है ये आपके लिए नहीं है। पैसे फैसिनेशन है, अच्छा लग रहा है, जो भी मामला हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी ये एक्चुअल में फिर आपके लिए नहीं आया। तो या तो आप अपने आप को चेंज करके एडजस्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे, फलां कैसे, नहीं इतना तो नहीं, ये तो दुनिया है, ये तो मसाइल हैं, ऐसे तो करना पड़ता है, देखें ना ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है आप हाफ हार्टेड हैं, और हाफ हार्टेड आदमी मारा जाता है। यू हैव टू टेक वन साइड, या आप फोर्सेज ऑफ डार्क के साथ हैं या फोर्सेज ऑफ लाइट के साथ हैं। ये बात कि आप गलतियां नहीं करेंगे, गुनाह नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, दैट्स ग्रांटेड, सब कुछ होगा, दोनों साइडों पे होगा, गलतियां दोनों तरफ होंगी आपकी, बट एटलीस्ट यू हैव टू चूज द टीम। ठीक है, नाइस ऑफ
15: यू। यू आर द लास्ट, वन मोर थिंग, आई एम सॉरी,
12: आई एम द लास्ट ऑफ द
15: शो, व्हाट यू से, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करिए, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। एक्चुअली दिस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माय फादर, आई डोंट नो, इट जस्ट लिंक्स टू हिम बिकॉज़ ही ऑलवेज यूज्ड टू से द सेम थिंग।
12: एक्चुअली ना वो पाकिस्तान से थे?
15: नो, आई एम फ्रॉम इंडिया ओरिजिनली।
12: अच्छा, ये जो हमारे दो तीन लोग हैं जो ये चीज़ें कहा करते थे, मुझे बाद में पता चला एक्चुअली हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान के, शफाक अहमद साहब, ये वो कहते थे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मैंने किताब से, मैंने रब से लिया था, वो कहते थे तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो उससे हुआ क्या कि जब मैंने चीज़ों को, जब मैं सोचा कि जब आप आसानी करेंगे तो उसकी रिटर्न में आप ही के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, अगर रब कह रहा है तो ऐसा ही होगा। तो मैंने आई केम अप विद इट लाइक दिस, बट वो उन्होंने अपने ज़माने में कहा हुआ था, क्योंकि ये सब हम एक ही सोर्स में हाथ डाले हुए हैं, वहीं से ये सब कुछ आता है। तो कभी कभी इवन सरप्राइजिंगली कुछ नज़में ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं लिखता हूँ या किसी ने लिखे होते हैं, वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो सेंचुरीज पहले कोई कह चुका होता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी आसानी ज़रूर करनी है हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका हक अदा करने के लिए कभी कभी खुद आके कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपना पॉइंट दें। आज मैंने आपको इतनी लंबी बात इसलिए भी ऑन एयर की कि बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते इस तरह खुलकर, तो आपने उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया। आपको भी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेडियो आज़ाद, और ग्रेट फॉर मैम, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
16: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
17: Hi, my name is Isa Ahmed Mola. I want to say, follow your dreams until they are accomplished.
18: Why do
17: Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
18: Legrade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to legrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Legrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
19: Assalamu alaikum. My name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
20: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
21: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat पेश कर रहा है 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशिस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे हमारे पास महदूद निशिस्तें बाकी हैं आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ
22: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
9: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
9: Insaan, jo ke mera meri fascination hai, romance hai mera, human being. Uske baad, Rab, matlab jo creation hai, creator. उसके साथ ये दुनिया जो कि मेरे साथ क्रिएट की गई है और चौथा मैं ये चार चीज़ें इन चार चीज़ों के बारे में बोल के लब आज़ाद हैं तेरे रियलिस्टिकली इनके बारे में बात करना चाहता है फैलेसी मिस्टेकन बिलीफ पे नहीं जो
12: 10 15 20 25 30 साल तक सीखा समझा और मुझे सिखाया बताया समझाया गया, वो नहीं। उसको छोड़कर जब मैं ईमान लाया, ठीक है जी, मुसलमान होना और चीज़ होती है, ईमान लाना और चीज़ होती है। इसीलिए जो हुज़ूर पाक के पास जब लोग आए तो रब ने कुरान में उनसे कहा कि इनसे कहो कि तुम मुसलमान हुए हो, तुम ईमान नहीं लाए। और आगे फिर ईमान लाने वालों की उन्होंने लिस्ट की कि उसमें ये ये ये तमाम चीज़ें जब तुम्हारे अंदर आएंगी। तो जब ईमान आदमी ले आता है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो फिर वो आदमी वैसा नहीं रहता जैसा वो था, वो वैसे नहीं सोचता जैसे वो सोचता था, वो वैसे नहीं करता जैसे वो करता था। वो चीज़ों में मकसदियत मीनिंग ढूंढता रहता है, उन चीज़ों में खुशी सुकून रिजल्ट्स ढूंढता रहता है, उनसे वो रिलेट करना मार्फत की तरफ वो जाता है कि अगर ये फूल इतना खूबसूरत और इतनी कमाल चीज़ मुझे मिल गई और इतना कमाल इंसान मुझे मिल गया, तो इसको क्रिएट करने वाला, इसके बीच में ये नज़ाकत से लेके खूबसूरती और ये इमोशन इंसान के डालने वाला जो है वो कितना कमाल होगा, और मेरे तक जो चीज़ आई है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। इसलिए वो कमिट करना है जो आप दे सकें, वो बात करनी है जो आप कर सकें या करके दिखा सकें या उस पर एटलीस्ट कोशिश करें। और ये सब कुछ आप जब कर पाएंगे, और इस दुनिया के लिए उतना करना है मुझे जितना मुझे इसमें रहना है, तो और लोगों के साथ भी समझना है कि लोग रास्ते के हम सफ़र हैं, सफ़र नहीं है, सफ़र हमारा वो मकसद है और एंड हमारा लोग नहीं है, वो ज़ात है जिसने हमें, जो हमारा शुरू था वही हमारी इब्तिदा थी, वही हमारी इंतहा है। और इसके बीच में अगर किसी को लगता है कि मैंने इस सर्कल से और इस रास्ते से निकलने की कोशिश नहीं की, तो 30-32 साल में वही सारी कोशिशें करता रहा। पहले मैं वो सारी चीज़ें करता रहा कि मैं किसी तरह इस ट्रूथ से अपनी जान छुड़ा लूं, और ये ना हो ऐसे, और मैंने हर वो काम करके देखा, लेकिन इससे कोई छूट नहीं है। इंसान को इधर ही वापस आना पड़ेगा, वो जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं पर जाके ख़त्म होता है, लेकिन उसके बीच में उसने किया क्या, उसने सोचा क्या, उसने बनाया क्या, उसने बनाकर दिया क्या, उसने क्रिएट क्या किया, उसने फील क्या किया, उसने लोगों के अंदर क्या जज्बा पैदा किया, और उसने कैसे ट्रूथ को ट्रूथ की तरह, उसने दिल इतना बड़ा किया, दिमाग इतना बड़ा किया अपना, कि सच को, हक सच को सच के तौर पे ले सके, उसमें अपनी ख्वाहिशात ना डाले, और जब कोई चीज़ आए कहीं से तो उसमें अपनी ज़ात से चीज़ें ना डाले, जिसने जो तोहफ़ा दिया है उसको वैसे ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात उसमें ना डाले। वो एक लाइन थी आज़ाद थॉट में जो मैंने लिखी थी कि विजडम बिगिंस फ्रॉम द डे यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स द वे दे आर दे एक्चुअली आर रादर देन व्हाट यू वांट और डिज़ायर देम टू बी। ये जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, जो चीज़ जैसी है रब आपको हकीकत पसंद बनाना चाहता है, रब हक है सच, वो आपको सच से कनेक्ट करना चाहता है। झूठ और धोखा, ये दोनों चीज़ें आपका उससे कनेक्शन काट देगा, वक्ती भी होगा तो कट जाएगा जब तक आप उससे रुजू नहीं करेंगे, जिसके बारे में वो बार बार कहता है। उसी को वो रहमत भी कहता है, उसी को वो तौफीक भी कहता है, उसी को अपनी मगफरत भी कहता है, और यही वो कहता है कि कुछ कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। क्योंकि इबलीस वर्ड जो है ना अरबी में, उसका मतलब ही ये है इंतहाई मायूस। वो मायूस है, हम मायूस नहीं हैं। किसी वक्त कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी कोई मिरेकल भी कर सकता है। अपनी कोशिश आदमी करता रहे, अपने आप को बेहतर करता रहे, कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म करता रहे, ये हमारा मकसद है, ये इस शो का भी मकसद है, ये हमारी ज़िंदगी का भी मकसद है, ये इंसान होने का भी मकसद है। इससे ज्यादा इस बात को मेरा नहीं ख्याल में एक्सप्लेन बेहतर कर पाऊंगा। सही हो गया
0: जी ना,
12: गुजारा हो गया
0: जी,
12: अब आपको जाने दूं?
0: हाँ जी आजाद लाला।
12: खुदा हाफिज। किसी और मेहरबान को लेते हैं जो मोहर मेहरबान लग रहे हैं। रेडियो आजाद यू रौंदे। वालेकुम सलाम है।
0: मुबारक मुबारक।
12: सलामत सलामत, पुराने जमाने में हमें इतना ही पता था।
0: किसी ने कहा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए।
12: बिल्कुल।
0: अब तो बदनामी का शोहरत से ये रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो आजकल जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, मूवीज हो, टीवी मीडियम हो, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी का चैनल हो, सबको, हर लोग जो है सब कुछ करने को तैयार हैं। किस लिए? टू गेट द वायरलिटी। और वायरल होने में क्या चक्कर होता है? उनको कमेंट्स भी मिलते हैं, उनको अट्रैक्शन भी मिलती है, उनको फॉलोशिप भी मिलती है।
12: अब आप समझ गए हम वो सारे क्वालिफिकेशन
0: उनके लाइक्स भी मिलते हैं,
12: हम वो सारे क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं करते, इसीलिए हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता और ना हमें ये चाहिए।
0: आगे सुनिए तो सही। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस किया, जिसको रेडियो आजाद ने इन 14 सालों में ग्रैब किया। अब वो लॉन्ग टर्म गेन क्या था? इंटेग्रिटी का। तो रेडियो आजाद के ये जो 14 साल गुजरे वो इंटेग्रिटी में गुजरे, और जिसको आखिरी दम तक शायद रेडियो आजाद का ये एक स्लोगन और एक लोगो भी बन सकता है, वो हमें, हम सुनने वालों को, देखने वालों को कहाँ नजर आता है? अगर कोई पूछे, वो नजर आता है आपके फंड रेजिंग में। जब एक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होकर, देसी लोगों में बहुत गिने चुने उंगलियों पे लोग होंगे, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और लोग फंड रेजिंग के लिए बात करेंगे, तो वो लोग अगर उस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रब की तरफ से ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ऑन एयर आकर अपनी हक हलाल की कमाई से पैसा कमाकर अगर वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डोनेट करते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी को शो करता है। वो इंटेग्रिटी रेडियो आजाद की कहाँ नजर आती है? उन तस्वीरों में जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, जो हम देखते हैं, चाहे हम इस शहर में हैं या नहीं है, वो चेहरे जो उस क्राउड को देखकर आपके प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी नजर आती है। क्योंकि जनरली जब आप इवेंट्स में जाते हो तो जो लेवल ऑफ क्राउड है वो लेवल ऑफ कमिटमेंट को शो करता है। तो ये रेडियो आजाद की इंटेग्रिटी जो उसने कमाई है। तो बींग यू नो कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं रब करे कि इस सफर में जो रेडियो आजाद का आने वाला है, और बहुत से खूबसूरत जहन और दिल रखने वाले लोग आपकी टीम में और इस प्लेटफॉर्म के लिए जरिए जो है एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ लिसनर, वो काम करें और ज्वाइन करें, और आपका काम एज अ आजाद खान इटसेल्फ और रेडियो आजाद का नाम हम लोगों को इसी तरह से एंटरटेन, इन्फॉर्म और इंस्पायर करता रहे।
12: So nice,
0: और आप और ज्यादा तरक्की करते रहे।
12: आज हमने एक नया 14 साल के बाद हमने आज पहली दफा मैंने वर्ड यूज किया आजादियंस का। अगर हमने कमेंट्स वो जो हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर, आशा जी हमारी जो टीम मैनेजमेंट वाली है, उन्होंने जब डाला तो मैंने उसमें लिखा व्हाट कैन आई से, ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स जो आजादियंस हैं। तो आज मैंने पहली दफा खुद ये वर्ड यूज किया है, मैंने कभी भी नहीं यूज किया, ना किसी और ने शायद किया हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 14 साल के बाद अब मैं जैसे इसको विजन जहाँ तक थी
0: फील कर,
12: वो अक्सर लोग जो मुझे पूछा करते थे कि जी आप रेडियो आजाद को कहाँ देखते हैं, तो मैंने कहता था जी अपने वक्त पर आएगी, लेकिन अब मुझे रेडियो आजाद जहाँ नज़र आ रहा है और जिन रीजंस की वजह से नज़र आ रहा है, उसमें जितना टाइम पड़ेगा, जितनी एफर्ट्स पड़ेंगी, जितनी रिसोर्सेज पड़ेंगी, जितनी हमारी टीम पड़ेगी, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं इतने सालों से जमा कर रहा था कि ये बेसिक्स हो जाए, हमारी ट्रेनिंग भी हो जाए हम तमाम लोगों की, लोगों को अपनी यू नो चीज़ों में वीकनेसेस, स्ट्रेंथ सब नज़र आ जाए, उसके बाद हम इनके ऊपर काम करें और टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड हो गई है। तो अब इंशाल्लाह वो मौका आ गया कि हम इसको आज़ादियंस का ये जो काम है हमारा रेडियो आजाद की, का उसको आगे बढ़ा सके। जी
0: एक इस बार आज के दिन की मुनासिबत से, क्योंकि आपने इस पौधे को पड़ा किया 14 साल का, जब कोविड आया था ना आजाद, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत टफ डिसीजन लिए थे। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी टाइम इज टफ सो वी शुड लेट गो ऑफ पीपल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि टाइम इज टफ सो वी शुड नॉट लेट गो ऑफ पीपल। तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा पला पूरा किया, या आपका थॉट प्रोसेस था या जो भी था, इसमें बीइंग अ लीडर और एक जनरली लाइफ में हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग, और इसमें कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं, स्पेशली इमोशंस को? क्योंकि जब एक चीज आपने बनाई होती है, लगाई होती है, और उस फैक्ट और आप एक लीडिंग पोजिशन पे हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग?
12: बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग सिर्फ रेडियो आजाद के हिसाब से तो दूंगा ही मैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको जिन टीम्स में आप लोग काम करते हैं, जिन फैमिलीज़ में, जैसे फैमिली भी एक टीम होती है, आप अपनी फैमिली में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जो आपका सवाल है, जिसका जब मैं जवाब दूंगा, और साथ साथ रेडियो आज़ाद की चीज़ भी हो जाएगी। देखिए एक तो मैं रेडियो आज़ाद का फाउंडर हूँ, क्योंकि बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे एक शो था, पहले मैं किसी और रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए काम किया करता था, कुछ साल तक हमने एक दो स्टेशन पे काम किया, बल्कि तीन स्टेशन पे डिफरेंट पे काम करने के बाद हमने अपना रेडियो स्टेशन जब पहला खोला, टाइम ब्रोकेज वगैरह जब हमने किया, तो वो 3 घंटे का एक शो था बोल के अलावा आजाद हैं तेरे, उसमें फिर आयशा जी हमारे साथ आई, और उसके बाद तो इस तरह रेडियो आज़ाद, और फिर लोगों से ही हमने 30-32 नाम थे जो ऑन एयर हमने लोगों ने दिए, फिर हमने उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट किए, उसके बाद रेडियो आज़ाद का नाम जो है वो फाइनल जो है वो हुआ। उसके बाद اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں فاؤنڈ ہو گیا, فاؤنڈر ہمیں کر لیجئے, لیکن ریڈیو آزاد کو بڑا کرنے کی جو ذمہ داری ہے اور جو ساری رسپانسبلٹی اور جو کریڈٹ ہے وہ عائشہ جی کو جاتا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیم آتی رہی, ہر ایک نے حسب توفیق حسب حال جو بھی ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کیا. یہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بڑا کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے اور جو ایموشنز اس کے ساتھ آپ کے جو ہوتے ہیں, کہ میں جب کسی چیز کو پہلے جب زندگی میں میں کوئی چیزیں وغیرہ بناتا تھا تو وہ اور طریقے سے ہوتی تھی, اس لیے اس میں کوئی اتنا کمال نہیں ہوا, چیزیں بن گئیں, چلتی بھی رہیں اور ہو بھی گئیں, لیکن بول کے لب آزاد ہیں تیرے کی وجہ سے کیونکہ ریڈیو آزاد بنا ہے, تو اس کی جو ساری کی ساری ویژن تھی اس میں میرا پورا فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو نہیں چھوڑنا, اور جو بھی ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی اس میں صرف وہ اپرچونیٹیز پک اینڈ چوز کرنی ہے جو اس مقصد سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور الائن میں نے صرف اس کو لاز آف یونیورس کے اوپر رکھا ہوا ہے, رب کے جو قانون ہے وہ اگر اس کے اندر آتے ہیں جس میں نیت سے لے کے ایک پورا پروسیس ہے کام کرنے کا, اور اگر یہ سوشل بزنس ہے تو پھر وہ میں نے حضور پاک سے سیکھا کہ وہ کیسے بزنس کرتے تھے اپنی چیز کی کا ایپ بتا کر, تو اس میں کمزوری کیا ہے وہ سب چیزیں میں خود بتاتا ہوں, اس سے پہلے مجھے لوگ بتائیں, جیسے میں اپنی ذات کی بھی ساری کمزوریاں خود لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں آگے سے, کیونکہ میں ہوش کی زندگی میں یہ ساری چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں. تو جہاں تک چیز ہے آپ کسی ایک چیز, جیسے آپ کا بچہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹیو کر کے رکھیں گے اور سب کچھ اپنے پاس ہی رکھیں گے تو وہ کبھی بڑا نہیں ہو پائے گا, تو اس کی کوئی آزادی دینی پڑتی ہے, لوگوں کو چیزوں میں کچھ فری ہینڈ دینا پڑتا ہے, ہر آدمی کو کچھ جابز ہوتی ہیں, جاب اپنے اپنے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو جب یہ جابز یا آپ اس کو رول ڈیفائن کر, رولز ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے, کئی رول لوگ زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور مشکل تکلیف پریشانی میں وہ زیادہ رولز کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے تھے, وہ آہستہ آہستہ ان کے رول کو آپ نے بالکل کلین کر کے کلیئر کرتے جاتے ہیں, جب تک ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا. وہی شعر جو میں کروڑ دفعہ سنا چکا ہوں اور ہمیشہ ہر دفعہ نیا لگتا ہے, زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, زندگی ایک چیز جو چلنے والی ہے جس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, اس کو کانسٹنٹلی ساتھ چلائے رکھنے کا طریقہ عناصر میں ظہور ترتیب, ہارمنائزنگ افیکٹ ان دا آل ایلیمنٹس پریزنٹ. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا, انہی ایلیمنٹس کا ڈس ارے ڈسٹربنس جو ہے وہ موت ہے کسی بھی چیز کی. تو آپ نے ایلیمنٹس دیکھنے ہیں کون سے ہیں, ان کا اسٹرینتھ دیکھنی ہے, ہر ایلیمنٹ میں اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر ایلیمنٹ میں ویکنیس ہوتی ہے. اس کے بعد جو اوپر بیٹھ کے پلان کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے, اور اس پلاننگ کے اندر بھی جو پلان ہے نا اس کا جو اوپر پیکج ڈیل ہے اس میں بھی ایک اسٹرینتھ اور ایک ویکنیس ہوتی ہے. تو اس کو جانتے ہوئے باقی لوگ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے, اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ماحول انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے کہ نہیں اس گول کے لیے جو آپ چاہتے ہیں, یہ لوگ جو آپریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کنڈیوسو ہیں کہ نہیں, اور اگر ہیں تو کتنے ہیں, اور نہیں ہو سکتے تو کیا ریزن ہے, کون سی چیزیں بیچ میں سے نکال دی جائیں گی تو یہ زیادہ کنڈیوسو اور زیادہ بہتر پرفارمرز بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو فری ہینڈ بھی دینا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آبزرویشن بھی ساتھ آپ نے رکھنی ہوتی ہے, اور جہاں پر بھی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں آپ دوبارہ الائن کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو, اور ساتھ ان کو یہ ریزنز بتاتے بھی ہیں اور ساتھ چلاتے بھی ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, جیسے گھر میں بہت پینس ٹیکنگ پروسیس ہے, اور جو بھی گھر کا لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اگر وہ چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھ پائے گا, اور جس جس کا جتنی پنشمنٹ بنتی ہوتی ہے اتنی جس کا جتنا ریوارڈ بنتا ہوتا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم رب سے آپ سیکھتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک کا انسینٹیو دیتے ہیں, اس کے حساب سے آپ لوگوں کو کام بھی دیتے ہیں اور چیزیں بھی آپ ان کو بنا کے دیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں انکریز کرتی ہیں. کیونکہ خود میں سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس والا آدمی ہوں, میں خرگوش کے کام پہ کبھی مجھے نہیں پسند تھا, وہ کچھوا بہت اعلیٰ تھا جو ریس آخر میں جیت گیا. سلو اینڈ اسٹڈی, اس پیشنس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اسی حساب سے آپ نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہوتا ہے, ان کے اندر آپ نے فیتھ بھی ڈالنا ہوتا ہے, سب کچھ انکلکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. گھر میں جیسے آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے, سسٹم بنائیں گے, اسی کا آپ کو بعد میں فائدہ ہوگا, نہیں کر پائیں گے بہت بڑے بڑے آپ کو نقصان ہو جائیں گے. جو چیز آپ اس گھر سے کر پائیں گے وہ آپ کی وجہ سے ہے, بائی دا وے لیڈر کی وجہ سے, جو چیز آپ اس گھر سے نہیں کر پائیں گے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے, اس لیے آپ نے ٹف لو کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرنا ہے, لیکن ذہن میں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی, آؤٹ فٹ کی بھلائی اور مقصد پہ آپ نے لگے رہنا ہے. جب تک آپ یہ سارے کام کریں گے, اور کوئی چیز आपका जो ऊपर बैठा हुआ बंदा होता है वो कभी किसी से आप कंपीट नहीं करता, वो टीम का कैप्टन जो होता है वो कभी किसी बंदे से कंपीट नहीं करता, और जिस बंदे में ये कंपटीशन या अपनी ख्वाहिश या अपनी चीज़ें या फेवरेटिज्म होता है वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता, चाहे वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा सा घर हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो अपने आप से बाहर निकल कर ज़र्फ बढ़ाना पड़ता है अपना। और ज़र्फ क्या है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टू डू bigger and better than yourself। जब आप ये इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे रब ने कहा किताब से, आप वो लोगे जितना आपका ज़र्फ है, तो जितना बढ़ाते जाओगे ज़र्फ को उतने रिजल्ट आते चले जाएंगे। खुद किसी के साथ भी आपका कोई मुकाबला नहीं है, जिसने जो किया उसके हिसाब से आपने रिवॉर्ड्स देने हैं, नहीं किया तो उसके हिसाब से आपने पनिशमेंट्स या जो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट्स होती हैं आपने वो करनी होती हैं। दूसरी बात, आपका दिल गुर्दा इतना होना चाहिए कि इसमें सिस्टम में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, जैसे कैंसर हो जाता है तो उसके बाद पूरी रेडिएशन, कीमोथेरेपी और जिस्म को काट के पार्ट को निकालना है, उसके लिए आपने ब्रूटली ऑनेस्ट होकर निकालना है, क्योंकि आप लॉयल हैं उस काम से, तो आपने समझना है। और जो लोग इस काम के लिए नहीं हैं वो निकलेंगे, और जो हैं वो लोग वहाँ पे रहेंगे और उसके रिजल्ट्स आएंगे। सो ये आपने समझना और करना होता है, और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, इसके लिए बहुत लोग बहुत कुछ सोचेंगे आपके बारे में जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे लोग, क्योंकि जब आप फैसला करते हैं ना, हर बंदे को जस्टिस पसंद है, बस जस्टिस करने वाला नहीं पसंद होता, क्योंकि जब जस्टिस होता है तो एक के हक में होगा, एक के खिलाफ होगा, जिसके खिलाफ होता है उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं होते। लेकिन ट्रेन करके लोगों को इतना समझाना और उनको पता होना कि इसका भी कोई रीज़न है, पीछे हट जाए खैर है कोई बात नहीं, ये समझना ज़रूरी होता है। जिसमें ये समझ नहीं होती वो सिस्टम उसको, और सिस्टम ऐसा है जैसे रब का सिस्टम है, वो उसको खुद ही उगल देगा। वो जैसे लोग जिन्होंने आते हैं टीम में, जिन्होंने जाना होता है, मैं पहले बता देता हूँ, वो नहीं टिकते, और जिन लोगों ने टिकना होता है वो टिकते हैं। और इससे कोर टीम भी होती है, वो लोगों का एक जगह पर होना, तीन चार लोग जब मिल जाते हैं ना, तीन चार लोग, एक बंदा एक हद तक ही मिरेकल करेगा, दो बंदे उससे ऊपर मिरेकल हद तक कर सकते हैं, तीन चार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डायरेक्शन हो जाती है, तो दुनिया में कोई किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इसका मुँह बोलता सबूत है। तो दैट्स द होल प्लान। अपने आप से बाहर निकलना सीखना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनका जो गिफ्ट है उस पर फोकस करना पड़ता है, उनकी वीकनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता वो सोनार की तरह टिक टिक टिक टिक हथौड़ी की तरह करके, लेकिन साथ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। किसी को जब तक आप लोगों को कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है जब तक आप लोगों को वो देंगे जो उनको चाहिए। ये सब जब आप करते रहेंगे तो चीज़ें सीधी रहेंगी। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, मकसद से नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी दुनिया एक तरफ जा रही, जाते रहें, मैंने सारी दुनिया को पिछले चार डेकेड्स में सबको वापस आते देखा है, सबको वापस आते देखा है। मैं एक दिन भी वापस नहीं गया, स्पेशली जब मुझे ये समझ आ गया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने डाउट किया हो अपनी इंटेंशंस को। अगर कहीं गड़बड़ हो गई है, काम नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं ही कहीं गलती कर रहा हूँ, या जिस जिससे गलती हो रही है वो भी मेरी ही गलती है, इसको मुझे ठीक करना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ज़िंदगी के शुरू के सालों के अलावा उस वक्त नहीं समझ नहीं थी कि मैंने जो काम को पकड़ा हो, एक तो वो काम सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जब तक मैं उस काम में खुश हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, जब तक मैं उस काम पे लगा हूँ मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, जब तक वो छोटे मोटे रिजल्ट्स दे रहा है वो काम सक्सेसफुल है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काम सक्सेसफुल है। दुनिया मेरे काम को या मुझे कैसे देखती है, दुनिया इस काबिल अभी नहीं हुई। अभी दुनिया ना छोटे बच्चे की तरह, वो चलना भी नहीं सीखा उसने, तिफले मकतब की तरह, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है, तो उस अभी वो बहुत लंबे चक्कर काट के वापस आएगी, क्योंकि मैंने जिस सोर्स में हाथ डाला है उसी ने दुनिया बनाई है, वो दुनिया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में सब देख चुका। उसके बाद उसकी चाहत को जब आप समझ जाते हैं तो फिर कोई मसला रहता नहीं है कि आप कभी वापस आएंगे, आप सिर्फ आगे जाएंगे। एंड वन डे यू विल क्रिएट समथिंग बिगर बेटर देन योर सेल्फ एंड देन यू विल फेड इन ओब्लिवियन। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फॉर यू। ये बूटा किसी के लिए लगाया गया है, ये इसके फल आप थोड़ा बहुत और बाकी सब किसी और को मिलेगा, इसकी छांव किसी और को मिलेगी, और जो जितना अच्छा इसको आगे लेके चलेगा ये उसके लिए होगा। मेहरबान हमारे साथ थोड़ी थोड़ी करते हैं उनसे बात। रेडियो आज ग्रोन दिए।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर
12: जी। वालेकुम सलाम मैम।
1: क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो 14 خوبصورت اور پیارے سال ریڈیو آزاد کے لیے.
12: سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ. آواز میں بڑی کھنک ہے, خوش لگ رہی ہیں.
1: دیکھیں, خوشی محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے, اگر نہ بھی ہونا تو بھی مسکراہٹ سجانی چاہیے, کیونکہ اس سے پھر بہت سے لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے.
12: وہ بھی, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برین کو نہیں پتا کہ آپ خوش ہیں, یعنی جب آپ مسکراتی ہیں یا خوش رہنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ آپ کو وہی فیلنگ دینا شروع کر دیتا ہے.
1: جی بالکل, اور میں بہت بہت بلیس سمجھتی ہوں اپنے آپ کو, خوش نصیب کہ الحمدللہ اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ٹیم کے ساتھ میں جڑی, مجھے ٹائم مطلب مجھے یہاں پر اپنی بات کہنے کا ایک فریڈم ملا جو کہیں اور پلیٹ فارمس میں نہیں ملتا. اپنی مرضی سے ہم ٹاپک چوز کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جتنی بات کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کچھ فلٹر کر کے بات کرنی پڑے یا کہیں روک ٹوک ہو. تو آپ کا صرف شو ہی نہیں سر,

0: सकता है, अगर कोई मुझे रेडियो आजाद के नाम से जानता है या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो मुझे ये टैग नेम जो है ना, ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड लगता है. और मतलब कहते हैं ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडनेस से फील होती है कि यार मैं इस टीम के साथ हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ. खासतौर पर आप लोगों का जो रेडियो थॉन था वो तो इट्स अ ब्लास्ट, क्योंकि जिस तरह से आपने और आयशा जी ने लेकर चले, और ऑब्वियसली ये बात रिमार्केबल होती है कि एक फास्टिंग के वक्त में जब हम बोल बोल के थक जाते हैं, हमें थर्सनेस फील होती है, लेकिन वो सब होने के बावजूद एक कहते हैं ना, एक मिशन को लेके चलना और उसको आगे तक प्रोसीड करना, ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता है. लोग समझते हैं कि आप दो घंटे बैठे हैं बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप अकेले बैठ के बात तो करके देखें. जब तक आपके लिसनर्स आपके साथ नहीं जुड़ते ना, आप उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाते ना, इसका मतलब आपने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया. और आवाज के साथ उसका रिश्ता बनाना जो सबसे डिफिकल्ट काम है जो मैंने यहाँ सीखा है.
1: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल थॉट्स, आपके काइंड वर्ड्स, और ये जो भी हमारे साथ जुड़ने का और इतना खुलकर, ये जो फ्रीडम, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है जिसके बारे में बात करता रहता हूँ, ये आपने अच्छा बताया कि आप लोगों को एग्जैक्टली वही फ्रीडम मिली हुई है जो मैं अपने शो में यूज़ करता हूँ और जो मैं बताता रहता हूँ. तो एग्जैक्टली आप तमाम लोगों को भी, सिर्फ एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और बाकी लोगों को भी रखना है, और बाकी जो भी आपका सारा कॉन्टेंट है वो क्रिएटिव फ्रीडम आप लोगों को दी गई है. और ये किसी और रेडियो स्टेशन, किसी और टी वी स्टेशन, किसी और मीडिया में 6 देख चुका हूँ अभी तक, कहीं पर ये ऐसे नहीं होता. तो जब आप कोई चीज़ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, उसका डिफरेंशियल एडवांटेज डिफरेंट चाहते हैं, जब आपके गोल्स डिफरेंट हैं, जब आपका मकसद डिफरेंट है, तो फिर आपकी टीम, आपके लोग, ये तमाम चीजें डिफरेंट होंगी, तो फिर आप उस मकसद की तरफ जाएंगे. सो वेरी ग्रेटफुल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. रेडियो आजाद, यू आर ऑन द एयर. हेलो हेलो, आप कट गए जी, दोबारा कॉल कर सकते हैं. बर्नौल नहीं है हमारे पास, 972-501-9390. सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद का ये स्पेशल शो जो हम कर रहे हैं जी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी. नंबर अगर आपका चल रहा है साथ साथ, तो आप लोग कॉल्स करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका हम इसके बाद भी आपसे थोड़ा सा टाइम हम रेडियो आज़ाद से ले सकें. नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा, रहे आपके साथ यहां और वहां। शे रेडियो इंस्पायर एफएम है।
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: Assalamu alaikum wa bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir as-sabil. That be in this world as if you were a stranger or a traveler.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
7: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
8: Some call it madness, some call it insane. We like to call it the brain burster. So get ready, it's about to go down.
9: Welcome back, my friends. It's time for the brain burster. If you want to have a go, make sure you take down the number 0777-948-1822. 0777-948-1822. You know what's going to happen, don't ya?

0: उफ, ये थोड़ी ड्रोनी आयत है। وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ। इस आयत के बारे में हम सब कुछ इसके जो लमसात हैं, इसमें जो बारीक नाजुक हिकमत है, उसको समझने के लिए थोड़ी सी तमहीदी बात करनी पड़ेगी मुझे। कलाम में, स्पीच में दो तरह की, उसकी तकसीम बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। एक तकसीम ये है कि जो बात वाकई हो रही है और जो बात होने का इम्कान है, कौन सी बात में ज़्यादा ज़ोर है, जो वाकई है या जिसका इम्कान है। हकीकत हमेशा ज़्यादा पुरजोर होती है इम्कान से, है ना। किसी भी ज़बान में आप अपनी बात में ज़्यादा ज़ोर डाल सकते हो। मैंने खाया, बेशक मैंने खाया, मैंने खाया, जबान अपनी आवाज़ ऊंची करके या बेशक का इजाफा करके, या मैं ही हूं जिसने खाया, आप उसमें कोई अल्फाज का इजाफा करके अपनी बात को और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोर बना सकते हो। इसको कहा जाता है तौकीद, अरबी में से कहते हैं क्या, तौकीद। तो अगर नॉर्मल सी बात है तो उसको कहने उसका दर्जा है ज़ीरो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। उसमें आप पुरजोर अल्फाज डालोगे तो उस बात में आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उस बात का, उस पर और ज़ोर और ज़ोर और ज़ोर और ज़ोर। जैसे अरबी में इन्ना का लफ्ज़ है, लक़त का लफ्ज़ है, ला का लफ्ज़ है, और अल्फाज हैं जिससे ज़ोर कलाम में ज़ोर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसी तरह कलाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डालोगे तो बात वैसे तो नॉर्मल थी लेकिन उस बात में कमज़ोरी आती चली जाती है, कमज़ोरी कमज़ोरी कमज़ोरी और कमज़ोरी और कमज़ोरी। तो हम देखेंगे कि इस आयत के दो हिस्से हैं। मैं अब इस आयत का तर्जुमा करता हूँ, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। वला इन मस्सतहुम, अगर कोई ऐसा भी हो कि उनको छू ले, क्या छू ले, नफहतुन, एक झोंक, मिन अज़ाब रब्बिक, तेरे रब के अजाब में से उनको एक झोंक भी छू ले, हवा की झोंक, लयकूलुन्ना, कसम से बार बार कहेंगे, या वैलना, क्या मुसीबत हम पर आ गई, इन्ना कुन्ना वालिमीन, हम ही थे जो हमेशा जुल्म करते रहे। दो आयत के हिस्से हैं, पहला हिस्सा है झोंक वाला, दूसरा हिस्सा है कि वो क्या कहेंगे। जो पहला हिस्सा है ना, उसमें अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें मैं अब जो लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए कि इस बात को कमज़ोर किया जा रहा है, इसको पुरजोर करने के बजाय उसको कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखते हैं कैसे उसको कमज़ोर किया जा रहा है। पहली बात है इन मस्सतहुम, अगर उन्हें छुए, अगर कहा होता ये टाइपो है इदा मस्सतहुम, इदा मस्सतहुम, तो कहा होता जब उन्हें छुएगी। इन और इदा का फ़र्क समझ लें। कोई माँ है, उसका बेटा बाहर बैरून मुल्क गया हुआ है काम से, वो ये कहती है अगर मेरा बेटा वापस आया तो मैं अंडे पराठे बनाऊंगी उसके लिए, या कहेगी जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं अंडे पराठे बनाऊंगी। अगर कहेगी या जब कहेगी, जब कहेगी, क्योंकि जब में ज़मानत है, जब में गारंटी है, जब में ज़ोर है और अगर में कमज़ोरी है। समझ में आई बात, आयत में क्या इस्तेमाल हुआ है, अगर, अगर तो आयत में ज़ोर ज़ोर का इजाफा हुआ या कमज़ोरी की गई, कमज़ोरी की गई, पहली बात, ठीक है, अगर, अगर छुआ। दूसरा है मस्सत का लफ्ज़, मस्सा, इसको अरबी में कहेंगे अक़ल्लु दरजतिल इसाबा, छूने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, लमसा, मस्सा, बरब, बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में। छूने का सबसे बारीक लफ्ज़ यानी तकरीबन ना छूने के बराबर छूना, उसको मस कहते हैं। पता भी ना चले कोई चीज़ छुए, उसको हम कहेंगे मस। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो कम से कम से कम से कम छूने के बारे में हुआ है, यानी छूने का कमज़ोर तरीन लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया इस आयत में। अब एक और मजीद इजाफा हो गया इस कलाम की कमजोरी में, ठीक है। फिर यहां पर मस्सत का लफ्ज जो है ना, ये तमसस नहीं है, वला इन तमसस हुम, तमसस होता मुजारे का सीगा, मुबारे, मस्सत है माजी का सीगा। इसको भी जरा समझ लें, मिसाल तो यहां स्क्रीन पर नहीं है, जबानी समझानी पड़ेगी मुझे। मैं कहूं मैंने बर्गर खाया, मैंने बर्गर खाया, और मैं कहूं मैं बर्गर खाता हूं, ठीक है, एक तो माजी और हाल का फर्क है, लेकिन एक और फर्क भी है। अगर मैं कहूँ मैंने बर्गर खाया, कितने खाए, कितनी दफा खाया? एक दफा। अगर मैं कहूँ मैं बर्गर खाता हूँ, खाता रहता हूँ, उसमें इस्तेमरार है, बार बार होने वाली चीज है। अगर इन तमसस कहा होता ना तो होता, अगर उनको ये छूती रहे, यानी उसमें एक से ज्यादा दफा का छूना होता। लेकिन यहां है मस्सत, माजी, यानी अगर छुए भी तो कितनी दफा, एक दफा। सबसे कमजोर छूने का लफ्ज, और वो भी हो कितनी दफा, एक दफा, और उसमें भी अगर का इजाफा, मस्सत हो। ठीक, आगे छुए भी तो क्या छुए, उससे पहले एक्चुअली ल इन, अच्छा अल्फाज में है इन मस्सत हम नहीं है, ल इन मस्सत हम है। उसको लामत तौकीद भी कहेंगे, लेकिन अगर ये शर्त पे आए तो मजीद कमजोरी करता है कलाम में। तो इस तरह तर्जुमा होगा, अगर इन्हें कभी छू भी जाए, यानी एक तो है ना, अगर वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, अगर कभी वो आ भी गया तो मैं उससे बात करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इम्कान है कि वो नहीं आएगा, बात में मजीद कमजोरी आ गई, बहुत सारी कमजोरियां आ गई ना कलाम में। तो ला इन और इन का फर्क यहां पर, ला इन मस्सतहुम नफहतुन। अच्छा, फिर नफहतुन नून से है, नफहतुन, और फिर है लफहतुन। अरबी में दो अल्फाज हैं, जब आप दरवाजा बंद करते हो ना तो कभी कभी हवा का झोंका अंदर एकदम से आता है दरवाजा बंद करते हुए, उसको अगर वो थोड़ा सा ठंडा हो तो उसको नफहा नून से कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी गर्मी हो तो उसको लफहा लाम से कहते हैं। दरवाजा बंद करते हुए जो झोंक आती है, ठंडी हो तो नफहा और गर्म हो तो लफहा, बारीक सी ठंड, बारीक सी गर्मी। अगर तकलीफ की बात हो रही है तो कौन सी झोंक में तकलीफ है, गर्म में, उसकी शिद्दत में भी कमी कर दी, नफहा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लफहा का नहीं। बात हो रही है जहन्नम की, जहन्नम में बात होनी चाहिए गर्म हवा की, लेकिन वहां की सबसे ठंडी तरीन हवा के झोंके के बारे में बात हो रही है। फिर अच्छा, इस कमजोरी के अलावा छूने के एतबार से तीन तरह का मादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, इसको छूना सबसे ज्यादा महसूस होता है, पानी छुए महसूस होता है, हवा अभी भी हमें छू रही है, हर लम्हे छू रही है। सबसे कम एहसास छूने का किस चीज का होता है, हवा का, हवा छू रही है शायद में, इससे कम छूना मुमकिन नहीं है और इससे बारीक छूना मुमकिन नहीं है। मजीद कमजोरी क्योंकि हवा का इस्तेमाल हो रहा है, वला इन मस्सत हम। फिर दूसरी बात, नफहा का लफ्ज मैंने बताया, जब आप दरवाजा बंद करते हो तो हवा आती है, तो इसका मतलब है आप अंदर नहीं आए, वो हवा बाहर निकली है। तो इसका मतलब है ये आयत अभी जहन्नम के अंदर की नहीं है, आप अभी बाहर हो और उसमें से एक झोंक आई और वो एक सेकंड से भी कम आपको जरा सी छू गई, पेरली छू गई, और ऐसे भी नहीं कि पूरी मुंह पर आकर लगी, क्योंकि मस का लफ्ज है तो इतनी बारीक छुई कि इससे बारीक छूना हो नहीं सकता। तो ये अभी जहन्नम के अंदर की बात नहीं है, अभी उससे बाहर की बात है। ठीक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन, अगर कहा होता अन नफहतु अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम के साथ, तो वो इस्तिग़राक भी हो सकता है, अल अहदी भी हो सकता है, उसके मायने ये होंगे पूरी झोंक आकर लगी, यानी एक तो ना पूरी उसकी वेव आकर आपको लगी, लेकिन उसका एक थोड़ा हिस्सा हो, पूरी हवा भी ना हो, उस हवा का भी थोड़ा सा एक फ्रैक्शन हो, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हो, उसको कहेंगे नफहतुन, उसमें भी कमी कर दी अलिफ लाम हटाकर। फिर मिन अदाब रब्बिक, वला इन मस्सतहुम नफहतुन मिन अदाब रब्बिक। अरबी के तालिबे इल्म यहां समझते होंगे, यहां पर मुदाफ मुदाफ इलैहि भी बनाया जा सकता था, वला इन मस्सतहुम नफहतु अदाबी रब्बिका, नफहतु अदाबी रब्बिका। अगर कहा होता मिन के बगैर तो होता तेरे रब के अजाब का एक की एक झोंक, तेरे रब के अजाब की झोंक, تو کی کا لفظ استعمال کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو جھونک کی نسبت ہمارے رب سے ہو جا ہمارے رب کے عذاب سے ہو جاتی. لیکن درمیان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ من. من سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے رب کے عذاب میں سے یعنی ایک تبعید, ایک فاصلہ کر دیا عذاب کے لفظ اور نفحہ کے لفظ کے درمیان, اور اس سے ان دونوں کی شدت میں کمی آ گئی, عذاب کی شدت میں کمی آ گئی. من, عذاب تو پورا ہے لیکن عذاب میں سے ایک باریک سی جھونک نکل کر کہیں پھسل کے باہر نکلی اور بیرلی اس نے تقریباً نہ چھونے کے برابر چھوا. نفحت من. اچھا, عذاب کا لفظ تکلیف کا ہے, تکلیف دینے کا, عذاب دینے کا. عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی. آگ بھی عذاب ہے, کاٹنا بھی عذاب ہے, کسی کو مارنا بھی عذاب ہے, مختلف عذاب کے کوڑے بھی عذاب ہیں. عذاب تو بہت سارے ہیں. اگر یہاں آگ کہا ہوتا, من النار, تو پھر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا کلام میں, اور پھر ہمیں ہوا کی تکلیف کا احساس ہوتا کہ کیونکہ ہوا کا تعلق آگ سے ہے تو پھر ہم ذہن میں آتا کہ اس ہوا میں ٹھیک ہے اس کی ٹھنڈی ترین جھونک ہے لیکن پھر بھی آگ سے تو ہے نا. عذاب کے لفظ میں لازمن آگ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں. تو فرض کرو وہاں پیچھے کوئی اور ٹارچر ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے ایک ہوا نکل آئی, اللہ نے اس میں سے حرارت, اس کلام میں سے حرارت نکال دی عذاب کے لفظ استعمال کر کے نار کے بجائے. اچھا, عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم, عذاب پھر آگ کی بات آ جاتی, عذاب النار, نفحت من عذاب النار, نفحت من عذاب الجحیم, نفحت من عذاب السعیر. ان میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اگر یہ کہہ دیا ہوتا نفحت من عذاب اللہ العزیز المقتدر, اللہ کے عذاب سے, اللہ کا ہی عذاب ہے, اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب. رب کے کتنے معنی ہیں؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا, کیا ہے؟ مالک, سید, مربی, منعم, قیم. اس میں مثبت معنی ہیں یا منفی معنی ہیں؟ بہت مثبت معنی ہیں نا رب کے اندر. کلام ہو رہا ہے منفی, کلام ہو رہا ہے منفی, اس میں آپ نے بہت سارے مثبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا, تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے. اچھا, رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربہم, نفحت من عذاب ربہم, ہم ہوتا ان کے رب, جن کو سزا دینی ہے ان کے رب کی طرف سے, ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا, مجرم تو کم از کم منفی ہے نا. ربی ہم نہیں کہا, کہا من ربی کا, اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, ان کی طرف جا رہی ہے. جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی. میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایک مختصر سی بات ہے لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں, میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں, شاید ہو, میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں, ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا, جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر چھونا, نہ ہونے کے برابر چھونا بھی ہوا کا, ہوا بھی باریک, اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک صلی اللہ علیہ وسلم. अच्छा चलो इतनी से आप तो ठीक है इनको बर्दाश्त करने का, इतनी तो खैर है। अब अगली अगली जो आयत का हिस्सा है उसको समझने से पहले एक मैं आपसे और एक और जगह आपको ले जाता हूँ। कोई मुजरिम होता है, उसको पुलिस पकड़ती है, उसको इंटरोगेशन रूम में डालती है, उसको एक दो थप्पड़ मार के, कहाँ था कल रात? घर पे सो रहा था। सही सही बता वरना। नहीं मैं घर पे सो रहा था। और उसको मार मार के मार मार के मार मार के आखिर में वो जाके ये कहा नहीं मैं उठा हुआ था, मैं नहीं खाई थी चॉकलेट। जो भी वो इतराफ करे, कितना टॉर्चर करना पड़ता है आखिर में जाके वो इतराफ करे है। और जो पक्के मुजरिम होते हैं ना जिन्होंने बहुत अरसे जुर्म किए होते हैं तो वो और भी पक्के हो जाते हैं, वो कहते हैं मार लो उसका क्या फर्क पड़ता है। इसे मुक्का कहते हैं। तो किसी और को लेके आओ, वो पक्के हो जाते हैं। अब ये इतना इतना बारीक अजाब बाहर से एक्सपीरियंस करने के बाद, इसका तजुर्बा करने के बाद ये मुजरिम क्या करेंगे, इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं लयकूलुन्ना, मैं कसम खाता हूं वो कहेंगे बार बार बार बार और बार बार। यकूलुन्ना की जमीर मुदारे है और मुदारे इस्तेमाल होता है बार बार के लिए। लाम है कसम के लिए, जो नून आखिर में दो है ना, दो मजीद कसमें, इस तरह कह लो मैं कसम खाता हूं कसम खाता हूं कसम खाता हूं, तीन मरतबा बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे बार बार कहेंगे। यकूलूना में चार गुना ज्यादा तौकीद है। यकूलून एक तो मुजारे हैं, दूसरा उस पर लाम है ये दूसरा दर्जा, फिर एक नून और फिर दूसरी नून, इसको नून थकीला कहते हैं। चार गुना ज्यादा जोर दिया गया है इस एक लफ्ज में, एक लफ्ज में। पहली आयत के पहले हिस्से में जोर ज्यादा दिया जा रहा था या कमजोरी लाई जा रही थी? कमजोरी। अब जैसे ग्राफ है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, अब इस आयत के दूसरे हिस्से में ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्या कह रहे हैं जी? इन या वैलना, वैल क्या है? वैल अरबी में कहते हैं ऐसी लानत को या ऐसी मुसीबत को या ऐसे अजाब को जिससे बुरा अजाब मुमकिन नहीं। किसी पर कोई ऐसी मुसीबत आए वो कहे इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, उसको अरबी अदब में वैल कहते हैं। या वैली, ओ मेरे साथ जो हुआ इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता था। रिवायात में आता है वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, और वो ऐसी वादी है जिससे जहन्नम खुद डरती है, उसका भी नाम वैल है। कुरान ने इस्तेमाल किया है वैलुन लिल मुकद्दिबीन वलकुमुल वैलु अला मा तसिफून, वही का लफ्ज़ कुरान में भी जहन्नम के नामों में से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा वैल का लफ्ज अभी ये कह रहे हैं बाहर जहन्नम के खड़े हुए कह रहे हैं या वैलना, हम पर तो जो इससे बुरा हो ही नहीं सकता हो चुका हमारे साथ, इससे क्या खराब होगा? अभी वो अतर नहीं किया, अभी वो ये चल रहा है, अंदाजा करो। और उसके बाद ये चिल्लाने के बाद क्या कहता है? इन्ना, अब इन्ना आप यहां पे किसी ने कहा था इन्ना मैं हूं, अब क्या है समझ में आया? क्या है? बेशक, बेशक हम, बेशक हम। अच्छा बेशक हम भी बहुत है, उसमें भी बेशक का इजाफा है, ये नहीं नहनु या वैलना नहनु, नहीं बेशक हम, इन्ना का इजाफा। फिर उसके बाद इन्ना वालिमून, ना ना ना, इन्ना कुन्ना वालिमून, कुन्ना है हम हमेशा से ही, हम शुरू से ही, हम शुरू से ही जालिम थे, हम हमेशा से जालिम रहे हैं, हम कब से जालिम रहे। यानी उसने एक जुर्म का एतराफ नहीं किया। मैंने कहा वो सीन बताया था ना फिल्म वाला आपको, जो आप देखते नहीं हो, जो मुजरिम कभी एतराफ करता है जुर्म का, ये बंदा इस मकाम पे खड़ा हुआ एक जुर्म का एतराफ नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? मैं हमेशा से जुल्म करता रहा हूं, ये तमाम जुर्मों का एतराफ एक दफा में, कितने लंबे टॉर्चर के बाद टूटा ये कि इसका स्टेमिना टूटा और इसने एतराफ किया। इस जोक के बाद इसने अपनी पूरी जिंदगी के तमाम जुल्मों का एक दफा में एतराफ, रो रो के बार बार बार बार बार बार, लयकूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना वालिमीन, ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے. انا کنہ نظلم بھی ہو سکتا تھا, مضارع بھی ہو سکتا تھا. ظالم ہوتا ہے اسم, اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں, سبحان اللہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی, تھوڑے سے دن رہ لیں گے, ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار, چلے گا اتنا بھی, ہمیشہ کے لیے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے, ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمیشہ کے لیے تو نہیں, اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے, تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن ہو گئے یا چھ دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا ایک سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. يا سلام.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے, تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں, تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری.
2: الحدیث الثامن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام, فقال اقرأ بها في نفسك, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي, وقال مرة فوض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه.
3: حديث 8 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself. For I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawmiddin, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, he says, this is between me and my servant. And my servant shall have what he has asked for. And when he says, اهدنَا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, he says, this is for my servant. and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasai, and Ibn Majah.
4: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
5: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
6: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.